0: क्या इन्होंने नहीं समझा कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और वो इनके पैदा करने से थका नहीं, वो इस बात पर भी कादिर है कि मुर्दों को जिंदा कर दे? हाँ, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कादिर है। और जिस रोज इनकार करने वाले आग के सामने किए जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम ये हक है। अल्लाह फरमाएगा कि तुम जो दुनिया में कुफ्र किया करते थे तो अब उसकी वजह से अजाब के मजे चखो। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे।
1: वाह।

0: तव्हां राब्ते में आहियूं, ईरान सां जल्द माहिदे जी उमेद आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे चइनि ॾींहनि जे दौरे जे पहिरें मरहले में हांगसू पे अची वियो। वज़ीर आज़म जे हांगसू शहर में चीनी सूबे ज़ीजियांग जे पार्टी सेक्रेटरी सां मुलाक़ात। मिस्टर वांग आऊ वज़ीर आज़म खे सूबे में अचण ते भलीकार चयो। वज़ीर आज़म पारां चीन जे ज़ीजियांग जे तरक़ियाती मनसूबे जी सराह। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान सूबे जी ज़ियांग सां सहकार खे थी ॾियण जी ख़्वाहिशमंद आहे। सूबाई सतह ते सहकार पाक चीन लाॻापन जो अमथंब आहे। सरहदी सहकार सी पैक फेज़ टू खे अॻिते वधाए माहौलियाती तोहफ़ आला मयारी मुआशी तरक़ी खे अॻिते वधाए सघे थो। वज़ीर आज़म दौरे दौरान चीनी सदर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं बि कंदो।
1: राति बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो टे लॻी अथसि, हिते रस्ते में साह ॾिनो। वॾेरा माण्हू आहिनि, ख़ैर थी आहे, हिन खे लॻी
2: आहे। साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां ॿुधो?
3: बसि बीठो नामीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर आहे।
1: केस दाख़िल अचानक हादसो थी रहियो आहे, बिलाल खान ते कराईंदा।
0: टुल भरिसां वॾेरे जे पुट हथां क़तल थियल पोइ जो खून लोहण जूं कोशिशूं। पुलिस पोरे त अजमल मेमण ते गोलियूं हलाईंदड़ वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न कयो। पुलिस वाक़िए जी अणधुरी जांच करण बदिरां वॾेरे बिलाल सरकी जे वांकार वहणु लॻो। पुलिस चौकीदार अजमल जे क़तल खे इतफ़ाक़ी करार जी केस बि दाख़िल करे छॾियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त वॾेरो बादशाह माण्हू आहे। बस गोली हली वई, नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि। बस इतफ़ाक़ थी वियो आहे।

शहरपुर जिले अंदर एचआईवी में खतरनाक हद तीन वात कंबर के किम्स अस्पताल में भी एचआईवी मरीजन जो गड़बड़ वो अस्पताल में लचे बिन मानू समेत पंजवी जन के एचआईवी की तस्दीक एक निंगरी हयाती विजाई चुकी। सेहत खाते जो चवण है तो गुजरे हफ्ते का अज तई एचआईवी जहा पंजी नवा केस जाहिर थे अठ बार अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया वो हो जिते एक निंगरी फोत थी वही। सेहत अख्तियार मूजिब गिम्स अस्पताल के बिन नर्सिंग ए पैरामेडिकल अमले के मानून में भी एचआईवी जाहिर थे बाद अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल ए गैर महफूज तिबी तरीक बाबत खर्चा वी वह बिन महीन दौरान 105 केसेस रिपोर्ट थी चुका।

केपी ऐं कोटिया में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी। केपी में 15 ऐं कोटिया में 9 दहशतगर्द मारिज विया। फायरिंग जी ॾेवठि में 4 अहलकार बि शहीद। केपी पुलिस फ़ौज बनू में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई में 15 दहशतगर्द मारिज विया ऐं 10 खां वधीक ज़ख़्मी। कोटिया में CTT जी कार्रवाई 8 दहशतगर्द मारिज विया, 4 अहलकार बि शहीद, 6 ज़ख़्मी। तर्जुमान सिटी फ़ौज बि CTD कोटिया जे डूरा इलाइक़े पंचपाई ऐं नौसार में कार्रवाई कई, जंहिं दौरान 8 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो।

0: जी सर, मैं सईद खान नाम है मेरा। मेरी बच्ची उरम वो जो है ना पेशावर से अगवा हुई थी, 2 माह उसके पूरे हो गए, कच्चे में थी वो। तो अब SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ जी। ऑपरेशन में ये हुआ, जो अगवाकार था उनको मार दिया उन्होंने, मुल्ला वहीद। बाकी वो पेशावर से खातून साथ में और भी थी, ये दोनों जो है ना पेशावर से बच्ची को लाए थे यहाँ, कच्चे में उन्होंने बेच दिया था। हाँ, कोई नशा शरबत वगैरह पिला के जो है ना ये बच्चों को लाते हैं। अंदर और भी बच्चे हैं, सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, बच्ची मेरी बाजियाब हो गई, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आने वाली है, सब इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। सिंध पुलिस में शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बात इतनी उछाली और आपकी मेहनत से ये बात इतनी आगे गई।
1: कानपुर के कोरशा वारे कच्चे में पुलिस ऑपरेशन दौरान पुणा 2 महीना अगुआ अगुआ थे निगरी उरम पठान बाजिया मुकाबले दौरान एक डोहारी मुला वहीद पंजाबी के मायने की तवा पुलिस मुजिब मारजी डोहारी मुख्तलिफ इलाक में मानून के धोखे से घुराए निगरी अगुआ करने बाद कच्चे में विक्रो कंदो जरिए मुजिब कराची में अगुआ जानल उरम पठान की बाजियाबी गिरफ्तार कल औरतुन की वापसी एवज थी है। SSP शिकारपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे कोट शाहू के कच्चे में ऑपरेशन कर 48 कलाक अंदर बिन निगरन उरम पठान लाहौर वासन जेनफर मसीह के बाजियाब कराया। कार्रवाई दौरान धाड़ेल मुला अब्दुल वहीद आराइन यासिन बंगलानी मारजी व्या। मारजी लोहारी यासिन बंगलानी पुलिस के 29 केसन मुला अब्दुल वहीद आराइन 7 केसन में घुर्बल हो।

मेरठ ते औरतुन में पिन की स्कूटीज विराई पई वजन औरतुन के तरबियत लाइसेंस ऐसी मुफ्त में स्कूटीज जी रहा हूँ। हैदराबाद में औरतुन के पिन की स्कूटीज देने वाली तकरीब के खिताब कंदे सीनियर वजीर शर्जील नवन चो तो सिंध हुकूमत वा मनसूबा डिना है सूबे ए मुल्क की तरक्की लाइ कम जारी रखासी। सीनियर सूबे वजीर शर्जील नामे मण हैदराबाद में 200 औरतुन में मुफ्त पिन के स्कूटीज विरायूं।

हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन अख्तियारन पारा कौमी विरसे पके किले से हथ चुरान जारी पके किले की दीवार से गैर कानूनी जानल दुकानन ता एचएमसी तरफा मुबैना मंथली वठने जो रिक्शा गैर कानूनी दुकान के मालिकन का मंथली वसूल थे निशानदी से आर्किलर जी खातो हरकत में आयो आर्किलर जी अमलदारन पारा गैर कानूनी दुकान ता मावा रकम वसूल कंदड़ एचएमसी मुलाजिम खिलाफ कार्रवाई लाए 31 मार्च से मेयर के खत लिखो खत में एचएमसी मुलाजिम जावेद तरफा गैर कानूनी मंथली कट कर बाबत निशानदी कई वही पौना ब महीना गुजरण बावजूद एचएमएस के मेयर ऑफिस तरफा कोई एक्शन न थो पके किले की दीवार से गैर कानूनी दुकान के रेगुलर करे जारी थियल चालान जो भी अख्तियार नोटिस न वरतो गैर कानूनी दुकान के नुसरत बाजार जो नालो जी रेगुलर करने की कोशिश भी जारी कराची सिंध आया है कराची के सिंध का केर भी अलग न थो कर सके जूनियर जुल्फकार भुट्टे जो टन वलयन में गाल बोल जूनियर जुल्फकार भुट्टे चो तो सिंध अस्पताल में सहूलत की खोट है पर हुकुमरान के का भी परवाह न है अस एच आई वी बाबत मानून के आगाही दी रहा हूं पंजाब की भेट में सिंध अंदर कम पे थे

एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मुक्सी सईद मेमण जी अगुवा में कराची वासी उमान के मुलस होने शख्स जाहिर कर संदस नालो ईसीएल में दाखिल करने जो मुतालबो डॉक्टर कादर मुंसी केटी न्यूज से गाले चो तो सईद मेमण की बाजियाबी लाइ कोशिश वन की बुनियादी सिमियारी संदुकम की है। सईद मेमण जो ब महीना पैर दिल जो बायपास है। संदस जिंदगी खतरे में आए। सईद मेमण के कुछ डी पैर मुबैना तौर बलूचिस्तान में अगवा की हुई।

0: व्हाइट हाउस बारां फायरिंग में उन जवाबदार एक वाटर सिक्योरिटी फोर्सिस जवाबी कार्रवाई में मारजी वा। व्हाइट हाउस बारां चेक पोस्ट से फायरिंग कंदड़ जवाबदार सुप मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वही। जवाबदार जो जहनी तवाजुन ठीक न हो, पैरिया बस सेक्रेटरियट सर्विस के एहलकार विड़ी चुको हो। वाके बाद व्हाइट हाउस में लगाया लॉकडाउन खत्म। गुजरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सिस चेक पोस्ट से हमलों कर 30 का गोलियों फायर क्यों। गोलन के ठिकान सबब सहाफिन अमले में भाज पैजी वही। खौफ हिरास पकड़ी वो। वाके बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो, कैंस महफूज हंध मुंतकिल किया वो।
1: रात बस यो वे वडेरे की ओता कपे उते वडेरो भी अस चौकीदारी कहो अस वडेरो वेठो टे लगी अत रस्ते में सा दिन
2: वडेरा मान भाषा पर फायर थी
0: तुलभर सां वरेरे जे पुट तां कतल थियल पोरे जो खून रोड़ण जूं कोशिशूं। पुलिस पोरे तजमल मेमुड़ ते गोलियूं हलाईंदड़ वडेरे जे पुट बिलाल सरकी के गिरफ़्तार न कयो। पुलिस वाकई जी अणधुरी जांच करण बदिरां वडेरे बिलाल सरकी जी वेंगार वहण लॻी। पुलिस चौकीदार अजमल जे कतल खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो। मक़तूल जे वारसनि चयो आहे त वडेरो बादशाह माण्हू आहे, बसि गोली हली वियसि, नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि, बसि इतफ़ाक़ थी वियो।

0: ख़रीदार तमाम घट आहिनि।
1: खपंदो आहे की रेट उहे मुनासिब घुरनि।
2: 1,20,000 का हमने उधर से लिया, भरपूर खास है। अभी मैंने बेचने का किया तो 1,00,000 भी नहीं लग रहा है।
0: रेट अॻे वारा आहिनि कोन, असां 4,00,000 सां करे वेठा आहियूं पोणा टे।
3: हाणे क़ुर्बानी जी ईद वेझो ईंदई, माल पीड़ियुनि में रश वधी वई, आवाम पारां महांगाई जूं दाहूं। वापारियुनि जो चवणु आहे त खेनि माल जो मुनासिब अघु न पियो मिले।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलन, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 खां शाम 6 ताईं, बरोज़ जुमो 12 ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
8: सिंध के माथे का झूमर
9: GFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिए और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क जिंदगी आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो तेहरान जो दौरो कामयाब अमरीका ए ईरान पारा गाल अमन माहदे के मसूदे के मुतफिक बिन्हीं मुल्क में 24 कलाकन अंदर मुआहदो थे इम्कान अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स मूजिब फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर अमरीका ए ईरान विच में मुआहदे लाइ मरकजी किरदार अदा किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कारीबात अमरीकी नायब प्रधान जे डी वेंस खसूसी सलाहकार स्टीव विटकोव ए सदर ट्रंप के नाटी जेयर्ड कुश्नर जकन जंग के खात्मे बाबत शुरुआती मसूदे की मंजूरी दे छी। मसूदे मूजिब जंगबंदी में 60 दिन के बाद की तजवीज डी वही है। उन दौरान ईरान के एटमी प्रोग्राम से गाल व्यू अमरीका ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी में मरहलेवार नरमी कंदो ए तेहरान के पाबंदी में रिलीफ ए परडे में मंजमंद असासा भी वापस कया वा। अमरीका जो नजरस्तानी मसूदे के जवाब अचण जो अज जो इम्कान है। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर ईरान के इंतहाई मुख्तसर पर नतीजा डींदड़ साबित थो। ईरान अमरीका विच में हतमी मुआहदे में हकारी अगबराई आईएसपीआर मूजिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर ईरान के इंतहाई अहम दौर मुकम्मल कर फील्ड मार्शल सालसिया की कोशिशों तौर ईरानी क्यादत से मुलाकातों क्यों। मुलाकात दौरान खिते में चिकताण घटाण ए तामीरी राबतन के हथी डण से ख्याल की डेवट थी। ईरानी क्यादत इलाकई मसलन के पुरमन हल लाए पाकिस्तान तामीर किरदार के सारायो। फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी चिकताण के खात्मे लाए सफारती कोशिशों को हिस्सो हो। मुलाकात में ईरान अमरीका आत्मी मुआहदे दां हकारी अग भराई की है। अमरीकी सदर ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर सऊदी वली अहद तुर्किया के सदर कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर ट्रंप चवाज फील्ड मार्शल आसम मुनीर से गाल बोल थी है। ईरान से मामला तकरीबन तय थी वन मुआहदे बाबत आपना हुरमस खोले छींदी उम्मीद है त मुआहदो ईरान के एटमी हथियार हासिल कर रोकी मुआहदे का अग नुकता मीडिया के न बुधाईदी।

व्हाइट हाउस पारा फायरिंग में मुलिस जवाबदार एक वाटड़ो सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई में मारजी व्या। व्हाइट हाउस पारा चेक पोस्ट से फायरिंग कंदा जवाबदार जनाब मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वही जवाबदार जो जहनी तवाजुन ठीक न हो पैरियां भी सेक्रेट सर्विस जेल कारण से विढ़ी चुको हो। वाक्य बाद व्हाइट हाउस में लगाया लॉकडाउन खत्म गुजरल रहा हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्स चेक पोस्ट से हमलो कर 30 का गोलियों फायर क्यों गोलियों के थकाउन सबब सहाफिन अमले में भाज पे वही खौफ हिराज पकड़ वो हो। वाक्य बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो कैंस महफूज हंध मुंतकिल किया। एमपीए सोराब सर की थुलभर से पोलत के कतल कंदल वडरे के मौके पर जान लगो आला सतह जांच का अगी वाक्यो इतफाकी करार दई छो फर्जी तौर से जांच जो मुतालबो भी किया। डॉक्टर सोराब सर की पंजे वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो वाक्य इतफाक है। बिलावल सर की पिस्टल साफ कर रहे तजमल उर्फ नोमान के गोलियों लगे पुलिस पर वे विंगारू पणजी वाक्य इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छोड़।

0: हैदराबाद में अणजतल औरत ए मर्द जा लाश हथ होसली वारे इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया। पुलिस वाकई पर अंदर पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कया। तंगवाणी में हथियार बदन की फायरिंग में जख्मी थियल नौजवान दम दई छो अस्पताल में दम धड़ी हवाले कर नौजवान खैर मोहम्मद निदवाणी सखर की निजी अस्पताल में इलाज दौरान जख्म असूल न सा दम दिनो। पुलिस चव है तो वाक्य पुरानी दुश्मनी था पेश आया है जांच कर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुन जो खास ख्याल रखो। डींह जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मी खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
5: This program is brought to you by
6: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
7: Pakistan ki shaan, Wadi-e-Mehran, Mehran ki pehchan, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडू सुठो
2: जी एफ एम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत तंगे जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरो मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। अधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो हो गया है, इतफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बाक हो गया, शहीद हो गया है। इतफाक आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है, लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और अफसर पे असर की टूल पर संपूर्त की कत्ल करने वाले जो मौके पर जान लगो आला स्तर जांच का आगे वाकियो इतफाकी करारी जो फर्जी तौर से जांच जो मुतालबो भी कयो डॉक्टर सौरभ सरकी पंजे वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई वाकियो इतफाक है। बिलावल सरकी पिस्टल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नौबान के गोलियों लगियों, पुलिस पर वडेरे की विंगारूपण की वाकियो इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छो। अमेरिका ए ईरान विच में गालन जो बो दौर जल्द पाकिस्तान की मेजबानी हेट शुरू थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चाह पाकिस्तान खिते में अमन लाय कोशिशों जारी रख अमन लाय अमरीकी सदर इस्लामी मुल्क के अगवाणन से गाल बोल कई। फील्ड मार्शल सद आसम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप से राबते में रहो अमन कोशिशन में फील्ड मार्शल सद आसम मुनीर की कोशिशों भी वाखाण जोगियो। ईरान मुआहदे से गाल मुकम्मल थन डील जो ऐलान जल्द थी सके तो अमरीकी सदर ट्रंप चाहे तो मुस्लिम मुल्क के अगवाणन से गाल बोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल सर आसम मुनीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आमरती सदर तुर्क सदर मिस्र के सदर ए कतर के अमीर से भी फोन से गाल मुआहदे बाद अपना हरबस भी खुली वो।

व्हाइट हाउस बारां फायरिंग में मुलज़िम जवाबदार एक वाटेड सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई में मारजी पाया। व्हाइट हाउस बारां चेक पोस्ट से फायरिंग कंदड़ जवाबदार सुणप मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वही। जवाबदार जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक न हो, पैरियां भी सेक्रेट सर्विस जे अहलकारनि सां विड़ी चुको। वाके बाद व्हाइट हाउस में लगायल लॉकडाउन खत्म। गुजरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट से हमलों कर 30 का वधिक गोलियों फायर कयूं। गोलियों जी ठकान सबब साफिन अमले में भाज पैजी वही और खौफ हिरास पकड़ी वो। वाके वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो, खेस महफूज हंध मुंतकिल किया वो। हैदराबाद में अणजतल औरत ए मर्द जा लाश हथ ओसरीवार इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया। पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया। खैरपुर ए बरपासी में उरड़ी तेजी से पकड़जन लगी। 13 बारड़ा सिटी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया जो चवण है तो मुख्तलिफ इलाक में 13 बारड़ा उरड़ी सबब सिटी अस्पताल मुंतकिल किया वा। आलाबाड़ से टालर मोटरसाइकिल में टक्कर, एक चुनौ चिपाट की फौत। कौमी शाहराह हादसे सबब पका चांग वासी बशारत चांग फौत थी वो। लाश जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल।

खरमपुर भरसा बेगारी केनाल में एक शख्स जो लाश है घोट मस्ती खान बिजरानी वटा लतीफ दायो जो लाश मिलो पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छो।

0: ऐं बख्शापुर में गुज़िरियल राति हथियार बंदनि जी फायरिंग में औरत जी मारिजी वञण बाद पुलिस जे कच्छ में ऑपरेशन गुज़िरियल राति हथियार बंदनि कोच ते फायरिंग कई। फायरिंग सबब औरत नज़ीरा मारिजी वई ऐं कोच ड्राइवर ज़ख़्मी थियो हो।
1: सन क्रॉप ग्रुप, आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हैरतन केस जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अमरीका ईरान विच में गालियुनि जो बियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमुन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां अमरीकी सदर टेलीफोन ट्रंप टेलीफोन ते राब्ते में रहियो। अमुन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चवण है अमरीकी सदर ट्रंप मुस्लिम अगवाणन से गालियों कयों गालियों दौरान हाकारी नतीजन की उम्मीद पैदा थी। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन गडल एतराम और इस्तेहकाम हर मुमकिन कोशिश जारी रखो खिते दुनिया के अमन लाए चिकता न पर गालियों सफारतकारी के तरजीह दियणी पवंदी। पाकिस्तान जरियो माणियल नई तजवीजन में लबनान में जंगबंदी भी शामिल है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची है तो तेहरान जो जोर है तो जंग खत्म थियण की कें भी मुआहदे लाए लबनान में जंगबंदी मुआहदो लाजमी हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन दौरे दौरान हांगज़ोर में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत कंदो। पाकिस्तान चीनी कंपनियों विच में सनअतकारी मुआहदन ए मफामती यादाश्तन ते सहयूं थींदियूं। शहबाज शरीफ चीनी कंपनियों के सरबराहन से भी मुलाकातूं कंदो। हैदराबाद में अणॼातल औरत ए मर्द जा लाश हथ होस्टी वाले इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया। पुलिस वाकई वाले हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कया। खैरपुर भर पासे मुरड़ी तेजी से पखड़न लगी 13 बारड़ा सिटी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजाम चवण है तो मुख्तलिफ इलाक में 13 बारड़ा उरड़ी सबब सिटी अस्पताल मुंतकिल कया व्या। आला भरसा ट्रालर मोटरसाइकिल में टक्कर एक जनों की बाढ़ की फोट कौमी शाहरा हादसे सबब पका चांगवासी बशारत चांग फोत लाश जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल।

0: आई बख्शापुर में गुजर रहा था हथियारबंदन की फायरिंग में औरत जी मारजी वन बाद पुलिस जो कच्चे में ऑपरेशन गुजर रहा था हथियारबंदन कोच से फायरिंग कई फायरिंग सब औरत नजीरा मारजी वही कोच ड्राइवर जख्मी थो हो।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में न्यूज
2: केस जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-763
3: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो डींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 AM ताईं उस खां पासो करियो गर्मीअ खां बचाओ तव्हां जे एहतियात में आहे पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: GAFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर. हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकर मेहरा पर माधली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो. ओके जनाब, सो व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो में आज तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदी. आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आपने क्या कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि आप डेली बेसिस के ऊपर यानी कि रोजाना कितनी मरतबा अपना चेहरा जो है ना वो आईने में देखते हैं, शीशे में खुद को देखते हैं. कितनी मरतबा क्या कभी आपने ये चीज नोटिस करी है? करी है तो फिर बताइए मुझे. और इसी के साथ साथ आप 888 और फेसबुक पर मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. और अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं या फिर खूबसूरत रहना चाहते हैं, ये तीनों सूरतें थोड़ी अलग अलग है. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खूबसूरत बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जो खूबसूरत रहना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं. तो

जाए तो तीनों चीजें जो ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है कि आप सब लोगों ने, यानी कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो आप सब लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आपकी स्किन किसी भी तरह की है, आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, फिर खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, इन सारे मामलों में आप लोगों के पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार शुदा है। ये बहुत ज्यादा ऐसी नेचुरल चीजें होती हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा अहम होती हैं। तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना हमेशा फ्रेश बनाए रखती है और जनाब आपकी स्किन को फेयर बनाती है। उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत करती है उन तमाम चीजों से जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे स्किन के ऊपर आ जाती हैं जिनके बाजू है ना हमारा चेहरा खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके चेहरे पर जब एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आपके चेहरे पर एक्नी आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना थोड़ी सी अपनी जो आपकी डेली लाइफ होती है ना उसमें थोड़ा सा आपने चेंजिंग लाना होता है। एक तो ये कि आपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल करना होता है, दूसरा ये कि आपने अपनी केयर जो है ना अपने चेहरे की केयर वो कुछ ज्यादा करनी होती है। जिनके चेहरे पर एक नहीं आते ना उन लोगों से यही बस गुजारिश होती है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस आप अपने चेहरे का ख्याल जो है ना वो नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा रखा करें, क्योंकि जिन लोगों के चेहरे पर एक नहीं आते तो उसको स्किन का जो ख्याल होता है ना वो कुछ ज्यादा रखना पड़ता है। तो अपने चेहरे को हमेशा क्लीन रखा करें और साथ में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि ऑयल कंट्रोल और साथ साथ एक्नी कंट्रोल करने में आपकी मदद करे। तो जो टीनेजर्स लोग हैं जो एक्नी की वजह से परेशान बैठे हैं कि चेहरे पर एक्नी आ चुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो आपके पास मौजूद होना चाहिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम। ये जनाब डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल सकता है और ये जनाब आयुर्वेदिक फार्मुलेशन के साथ तैयार शुदा है। यानी कि कोई भी आपको टेंशन और घबराने वाली चीज ये नहीं कि भाई हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या पता हमारी स्किन खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जनाब जब आप डॉक्टर पिंपल का ये एक्नी वाला ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक्नी है ना उससे फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो स्मूथ और क्लियर बना देता है। आपके चेहरे पर एक्नी मार्क्स हो या फिर आपके चेहरे पर जो है ना किसी भी तरह का एक्नी हो, ब्लैक पोर्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, या फिर जितनी भी सारी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नी बनाने का वजह बनती है, रीजन होते हैं, तो उन तमाम चीजों को खत्म कर देता है। तो ये डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब है, खास करके जैसे गर्मियों का सीजन आता है तो लोगों के एक्नी जो है ना वो खत्म ही नहीं होते और ज्यादा बढ़ते जाते, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। लगाने के तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल किया करें, जब आप सारे कामों से फ्री हो जाएं तो बस अपना फेस वॉश कर लें व्हाइट एज ब्यूटी सोप से, या फिर व्हाइट एज का फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं जो विटामिन सी से तैयार शुदा है। दोनों चीजों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी वाला जो ट्यूब है वो अपने चेहरे पर अप्लाई करें, जहां पर एक्नी हो वहां वहां पर लगाएं, चोट हो, कोई भी चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, जितने भी निशानात होते हैं, जिद्दी निशान हो, वो सारे रिमूव हो जाते हैं जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम का। तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, रात के टाइम लगाइएगा और लगाने से पहले हाथों को और फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। So, ये हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो हमें बताते भी जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं, कहां पर अवेलेबल हो चुके हैं, कहां पर अभी नहीं मिल रहे, ये भी आप मुझे बताते जाइए। लेकिन अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए, तो आप डायल कीजिएगा 03-1579-0595 नंबर आप लाजमी डायल कीजिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके सिटी में, आपके गोट में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो अवेलेबल कराइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए। खूबसूरती अब बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है। जैसे कहते हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोगों के लिए वो काम जो कि आप लोगों को बड़े मुश्किल लगते थे वो उतने ही आसान होते जा रहे हैं। तो वैसे ही आप लोगों के लिए ना खूबसूरती भी आसान हो चुकी है, क्योंकि आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। तो जाइए और परचेज कीजिए और इस्तेमाल करते जाइए। ओके जी, आपके मैसेजेस हैं जो कि जल्दी से पढ़ते जाएंगे वरना ऊपर चले जाएंगे। तो आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो जी? माँ ठीक, ताम बधाई हो?
और कहते हैं मसरूफियात बहाना भी हो सकता है और हकीकत भी, मगर नज़रअंदाज करना हमेशा वाज़े होता है. ये बिल्कुल सही बात है. हिदायतुल्लाह कहते हैं लवली दा जलवा सॉन्ग सलाम कैसी हो, मैं सफा ठीक था बुदार की आयो. और हालार अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और सनाला बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. उदास लड़की हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो मेरी प्यारी ओपी. और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, गुड आफ्टरनून. वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ. और ये गाना भाई मैं सोच रही थी जब से हमने जो है ना ये प्रोग्राम करना स्टार्ट किया है, मैं आपको कहती हूँ कि वाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है. तो वाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ मुझे इस गाने की याद आ जाती है कि ये वाला गाना भी आप लोगों को सुनाना है. तो आज हिदायतुल्लाह ने फरमाइश कर दी तो मैंने सोचा चलो भाई ये वाला गाना तो हम लाजमी सुनेंगे. तो वाइट एज की लवली क्रीम भी आप लोगों के लिए मौजूद है. इसके क्या फायदे हैं और आप क्यों इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर के बाद बताती हूँ. फिलहाल आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं. आप क्या कह रहे हैं, पोस्ट को इसी बात पर लाइक और शेयर करते रहिए.

अच्छा आदिल कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होते तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा अच्छा स्मार्ट किशोर भाई कहते हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है, स्मार्टू भाई आपको वेलकम करते हैं। और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगाकर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़कर चली जाए। बात में दम था वैसे। हजार खंड जो तो भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं छाला लाजवाब वाइट एश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा। अच्छा एस एन आर पानी वालेकुम अस्सलाम छाला खुशायो। हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम सुबह और शाम को डॉक्टर लिखी दिन होता चावल। एक दफो सुबह जो ढसो एक दफो शाम जो ढसो। ओके सो मां जमा का सवाल पुछो आए तो तमा डेली पांजो मु जको आईने में केतरा चके दिसना है छा तमा के ने चीज जो अंदाजो आए बुधायो मुखे। और किशोर भाई कहते कि टॉपिक में सुबह ऑफिस जाते वक्त देखता हूं फिर वापस आकर देखता हूं, अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो जाता है। अच्छा यानी तवा इडा सोना आयो ता पान के घड़ी घड़ी दिसना है। सुठी गाला दर्दी दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी कैसी हैं। और उदास लड़की कहती टॉपिक में तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए। जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है।

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो ना त हिकिड़ो हिकिड़ो ड्रॉ विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे सम्झो था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो दर्द दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता। बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी। और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ नाजुक दीदी टॉपिक को फॉलो किया है कहाँ फॉलो किया है यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे। ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं कहाँ से सुन रहे हैं मीरपुरखास से सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई जान को। और इसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूं तब चेहरा देखता हूं बस ना निकलो तब बस ये भी सही है।

0: अच्छा ही गानो न माणून के डेडिकेट जे के वाईट एसा प्रोडक्ट लगायन पया सोना ती जाय नल्ला सद्द को ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ मेरी नाई सिद्रा शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुख मरसद माजुदी नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारिया मरसद माजुदी वालेकुम अस्सलाम टंडो अलह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम
1: सोलर एंड बैटरी से डायरेक्ट और बाकी तमाम पंखे के मुकाबले में जबरदस्त रॉयल इन्वर्टर फैन साथ जिंदगी
0: रियाज अहमद लोहर भी हमारे शो सुन रहे हैं वेलकम सदा खालिद के मेरे मोबाइल सेट में आईना फिट सो में 24/7 आईना देखता रहता हूँ इससे मुझे अपने आप को समझने में आसानी होती है क्या बात है चाचा तो बहुत चाचा है ना कहते आज शॉपिंग बड़ा सुंदर रखा है आपने सच्ची बताए अच्छा रियाज अहमद के शो नाइस है आपका वालेकुम अस्सलाम जी वेलकम करते हैं आपको और ये हैं जी चाचा खालिद के लिए खूबसूरती तो डी स्किन क्रीम से आसान और दिल की खूबसूरती व्हाइटिश लवली क्रीम से आसान क्या मतलब है कि लगाते तो उसकी खाते
1: बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त रॉयल एक्सपीरियंस
0: ना करे
1: रॉयल इन्वर्टर फैन साथ जिंदगी मिक्स डालें अपने खानों में जान
0: हाँ जी क्या बात करें इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए इरम भी हमारे साथ मौजूद है इरम क्या कहती हैं हाँ जी बिल्कुल आप लगा सकती हैं सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए अभी सर्दियाँ नहीं बल्कि गर्मियाँ चल रही हैं ना तो गर्मियों में भी लगाइए जब सर्दियाँ आएगी तब

0: स्कूटियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोमेंट तैयब थेबू खां भी बोला थेबू के तमाम जो शो वेरी नाइस आहे मुखे गानो बुधराय जो तेरा मेरा है प्यार अमर बिल्कुल योगा ना जैसा
1: आइस बॉक्स स्टैंड अप बढ़ाए और बिल भी आए कम चेरी एयर कूलर्स
0: अच्छा शेताद कोर्स सही है आपको हमारा शो पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया वेलकम करते हैं मेरे को खास अब्दुल्ला महर वालेकुम अस्सलाम के बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है वाह साई वाह ले कराए छो तमाम दोस्त जी अफा देरी सऊ देरी फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो बेहतरीन है बहुत शुक्रिया भाईजान को वेलकम करते हैं और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला नहीं बल्कि शुएब महर हैं बाजी कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए ये इशारा हो गया कहाँ गया वैसे ऐसा वाक्य होता है कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं उनके दिल मेले हो चुके होते हैं ऐसा भी मत किया करें चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें शफाफ रखें और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करते रहे और अपनी नियत का भी ख्याल करते रहे और टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो न्यूज पे की जानब जाते हैं मेरी जान और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते तो आपने कहीं नहीं जाना बस हमारे साथ मौजूद रहिए सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खोल हो गया है, इतफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बाग हो गया, शहीद हो गया है। इतफाक आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है, लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और आप सर की थोड़े बरसा पोरत के कत्ल कनल वडेरे जे वडेरे जो मौके पर जान लगो आला सिता जे जात का अगे वाको इतफाकी करार दे छजो फर्जी तौर जात जो मुतालबो डॉक्टर सोहराब सर की पने वीडियो बयान में यकीन यारन की कोशिश कई तो वाको इतफाक आए बिलावल सर की पिस्टल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नोमान की गोलियों लगियों पुलिस पर वडेरे जी भंगारू पण जी वाको इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छो। वडे वजीर मुराद अली शाह पारा कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मनसूबे जो दौरो, वडे वजीर नुमाइश का सफूरा चौरंगी ताई तामीराती कमन जो जायजो वरतो, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन वडे वजीर के मनसूबे की अगबराई का आगाह कर शर्जील मेमन चो तो कम तेजी से जारी है, जल्द मिक्स ट्रैफिक लाय बहाल किया वो नुमाइश का मौसमियात ताई कॉरिडोर ते मिक्स्ड ट्रैफिक लेंस आए निकाल जो कम जारी है, वडे वजीर पारा इंतजामिया ठेकेदार के कम तेजी से जारी रखने की हिदायत।

0: डंडवादम भरसा मुड़स डंडा ए सिरोटा हणी जाल के कतल कर छो घोट माणिक थेम में घरू प्रशन त मुड़स नदीम जाल अलीना थेम के डंडा ए सिरोटा हणी कतल कर छो पुलिस नारी के मुड़स नदीम के गिरफ्तार कर वरतो। हैदराबाद में अणजतल औरत मर्द ज लाश होसड़ी वे इलाके में औरत मर्द ज लाश मिलिया पुलिस वाकई वे हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कया। खैरपुर बरपासे में उरड़ी तेजी से पखड़जन लगी 13 बार ला सीटी अस्पताल मुंतकिल अस्पताल इंतजाम चवण है त मुख्तलिफ इलाकन में 13 बार उरड़ी सवा सीटी अस्पताल मुंतकिल कया व्या हन। आलाबर सा टालर मोटरसाइकिल में टक्कर एक जनो फौत कोवी शारा थे हादसे से पक्का चांगवासी बशारत चांग फौत लाश जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल। करमपुर भरसा बेगारी केड़ाल में एक शख्स जो लाश घोट बस्ती खान बिजरानी वटा लतीफ दायो जो लाश मिलो पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छो। बख्शापुर में गुजरियल रात हथियारबंदन की फायरिंग में औरत के मारजी वरण बाद पुलिस जो कच्चे में ऑपरेशन गुजरियल रात हथियारबंदन कोच से फायरिंग कई फायरिंग सबब औरत नजीरा मारजी वही कोच ड्राइवर जख्मी थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: लाड़कानो टाइम रोजाना।

गानो एतरो खूबसूरत आना बुधी करे मतलब ये डाडू भलो महसूस थींदो आहे आई गानो मुखे डेडिकेट हुयो और ये आपके मैसेजेस ही जिनको हम जाहिर सी बातें पढ़ेंगे. अच्छा पैनल की जाने बातें हैं तो एक मिनट मैंने कहा तक आपके मैसेजेस पढ़े. अच्छा हाँ ये हमारे साथ फिरदोस भाई हैं और फिरदोस भाई कहते हैं अच्छा क्या मतलब आपने ये शायरी लिखी है. अच्छा कहते हैं तुमने ऐसा किया मेरे जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से. मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से. वाह वाह वाह वाह.

काफी बड़े दिनों के बाद हमने ये गाना सुना है, और इसी के साथ साथ ये गाना बस उनको डेडिकेट करते हैं जिनको ये अच्छा लगेगा। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बता दिया करें, ठीक है, शर्माया मत करें। और चाचा खालिद कहते हैं, भला पो ही वारो गानो हलायो, माँ भी केडो सिदरा चलो आया, तुझे शो में वरी वरी आया, जो भला मना आए छो मुझे शो में अचण का हाँ जो शो आ ता नहीं ना तो बाकी केर ही।

अच्छा कहो के हो डेडिकेट, ये जरा राज की बात है, वो राज में रखी जाएगी. अच्छा ये सकलीन अब्बास हमारे साथ है. सकलीन अब्बास आपको वेलकम इन खुशामद.

लोगों को कंफ्यूज इस तरह, बिल्कुल इस तरह किया जाता है. अच्छा संजय जी पाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो संजय भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हाँ मुझे दिल जगवाने थोड़ी राजी थी या ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आई तो वाला सिद्रा हिला हिला कॉमेंट्स याद है तो विजय चली था ना एनर्जी के लिए ये बिगाड़े भी तो ता है ना. अच्छा दर्दी दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका. नवाजिश जी नवाजिश. अच्छा ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून. माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? मैं सफा भली आया और कहती हूँ सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को और कहती है कि चापेक बहुत मर्तबा देखती हूँ. बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जो गानों नहीं असा फजीला सिंधी जी तरफा उन हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था. ठीक है

अगर सच्ची बताऊं, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ, तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना सच हुए. मुझे तो 4-5 घंटे मिलनी चाहिए बकबक करने के लिए. मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ, तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और इसके साथ साथ जो ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते ईद में ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकिब है। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ। वैसे माई चवंदी आहे माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है। तो ये है से पहले आप लोगों ने व्हाइट इश की लवली क्रीम लाजमी लेनी है ताकि आप ईद पर जो है ना अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट इश की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके थी क्या लगायो थी। अरे समाटो गोपांग कहते कि सिद्रा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो पोइ ईअं ई तव्हां हमेशा बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सुभाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे चाचू चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे रास की बात है वैसे।

अच्छा दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही ले शायद इतनी मर्तबा भाई अल्लाह। वैसे वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था तो छुट्टी।

अच्छा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम. तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा. और आप जो है ना वो वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा. वैसे वाइट एज के प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं ये भी आप मालूमात जरूर जो है ना वो लिया करें ताकि आपको ये पता चले कि हम कहाँ से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं. तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595. ठीक है. वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा आज. पता नहीं कि आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू. तो यस यस मैं जा रहा हूँ. सो भाई मोकलानी नाइस सलामत सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

इलाके बनू में पाक फौज पुलिस टिडी जो गडल ऑपरेशन सिक्योरिटी चरण मूजिब ऑपरेशन में 16 कार जी मारजी व्या ब पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस चवण आहे त ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो। पाक फौज ऐं पुलिस समेत ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीनी कंपनी विच में वफाबती यादाश्तनामन ते सहियूं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के शहर हांगज़ू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे असा पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकम्मल थियण जो जश्न मल्हाए रहा आहियूं। चीनी सदर जंग पिंग जे चीन के आलमी माशी अस्करी ताकत बणायो ज़खीरा सिड़पकारी की घुर्ज है। ईरान आबनाए हुर्मज़ खोलींदो ऐं काफ़ीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तमु कंदो। अमरीकी वीडीएम खां इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादी सां तेल विकिणी सघंदो, उहो सभु डील तहत 60 ॾींहं जी जंगबंदी में वाद दौरान थींदो। मफ़ामती यादाश्त में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाओ थियल यूरेनियम जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि, डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवणनि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, इमारती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं। मुआदे बाद अब नए हुर्मज़ बि खोलियो वेंदो। डील बावजूद आबनाए हुर्मज़ ते असांजो कंट्रोल हूंदो, तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो चवणु आहे। आबनाए हुर्मज़ खां गुज़रण जो वक़्तु मेरीटाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारी जारी कंदियूं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो आहे त एमओयूज आख़िरी मरहले में आहिनि, तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारनि ॻाल्हियुनि वक़्त खां अॻु जूं आहिनि। ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि न आहे।

अमरीका ईरान विच में गालियुनि जो बियों दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाकाइण जोगियूं आहिनि।

नायब वजीर आजम मिसाक राव जो चवण है तो अमरीकी सदर ट्रंप मुस्लिम अगवाणन से गाल गाल दौरान हाकारी नतीजन की उम्मीद पैदा थी। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन गडियल एहतराम और इस्तेकाम ला हर मुमकिन कोशिशों जारी रख खिते दुनिया के अमन ला चिकता न पर गाल सफारतकारी के तरजीह दी पवी। पाकिस्तान जरिए उमानियल नई तजवीजों में लबनान में जंग बंदी भी शामिल है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चवा तो तेहरान जो जोर है तो जंग खत्म थे कें भी मुआदे लबनान में जंग बंदी मुआदो लाजमी होंद। वडे वजीर इमराद अली शाह पारा शाहराए भुट्टो जो दौरो शाहराए भुट्टो जो शानदार शाह फैसल टुल प्लाजा ते इनफॉर्मल इजलास वडे वजीर पारा शाहराए भुट्टो ते पुलिस पेट्रोलिंग 24 कलाक यकीनी बनाने की हिदायत इजलास में एडिशनल आईजी आजाद खान शाहराए भुट्टो ते सिक्योरिटी बाबत वडे वजीर के ब्रीफिंग दिनी। वडे वजीर कराची बस रिपेयर ट्रांजिट रेड लाइन मनसूबे जो भी दौरो कयो। वडे वजीर नुमाइश का सफूरा चौरंगी तामीराती कमन जो भी जायजो वरतो।

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खुल हो गया है, इतफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बाक हो गया, शहीद हो गया है इतफाक। आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है, लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और आप सर की टुल बरसा पोरत की कतल के अंदर वडेरे जो पुत्र जो मौकफ वडेरे जो मौकफ वरजाण लगो आला सतह की जांच का आगे वाक्य इतफाकी करार दे छो फर्जी तौर जांच जो भी मुतालबो कर डॉक्टर सोराब सर की पैं वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो वाक्य इतफाक आए बिलावल सर की पिस्तौल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नौमान के गोलियों लगियों फिर पुलिस पर वडेरे की विंगारू पड़ी वाक्य इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छो। टंडवादम भरसा मुड़स डंडा ए सरोटा हणी जाल के कतल कर छो घोट माणक थेम में घरू प्रशन था मुड़स नदीम जाल अलीना थेम के डंडा ए सरोटा हणी कतल कर छो पुलिस नारी के मुड़स नदीम के गिरफ्तार करे वरतो। हैदराबाद में अणजतल औरत ए मर्द जा लाश हथ होसड़ी वाले इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया पुलिस वाके वाले हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कया। खैरपुर में बरपासे में उड़ी तेजी से पकड़न लगी 13 बारड़ा सिटी अस्पताल मुंतकिल अस्पताल इंजाम चवण है तो मुख्तलिफ इलाकों में 13 बारड़ा उड़ी सबब सिटी अस्पताल मुंतकिल कया व्या है। आलाबर से तालार मोटरसाइकिल में टक्कर एक जणों की बाढ़ की फौत कौमी शाहरा के हादसे से पक्का चांग वासी बशारत चांग फौत ला जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। करमपुर भरसा बेगारी एक शख्स जो लाश हथ घोट मस्ती खान बिजरानी वटा लतीफ दार जो लाश मिलो पुलिस ला जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर छो। बख्शापुर में गुजरियल रात हथियारबंदन की फायरिंग में औरत मारजी वन बाद पुलिस जो कच्चे में ऑपरेशन गुजरियल रात हथियारबंदन कोच से फायरिंग कई फायरिंग सबब औरत नजीरा मारजी वही है कोच ड्राइवर जख्मी थो हो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिए और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी आई सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे ताई बरोज जुम्मो 12 बजे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-760
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बारन बुजुर्गन ऐं बीमार मानुन जो खास ख्याल रखो दीह जो तमाम गरम वक्त सुबह 11 का शाम 4 वगे तई उस खां पासो करियो गर्मी खां बचाओ तवां जे एहतियात में आहे पांजे ऐं पांजे प्यारन जी हिफाजत करियो ऐं बेन खे भी जान दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स एनडीओ ऐं स्टार नेटवर्क जे तावुन सा आवाम जे आगाही जे लाए पेश कयो वयो
8: आप सुन रहे हैं
9: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

कोयटा जे शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वियो। शहीदन में एफ सी जा 3 जवान भी शामिल। वॾे वज़ीर सरफराज बख्शी जे मावन शाहिद रिम जी तस्दीक शायदि चयो त दहशतगर्दनि मासूम शहरनि खे निशानो बणायो। वज़ीर आज़म ऐं सदर पारां चमन फाटक धमाके जी मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त दहशतगर्द हुननि जा सरपरस्त पाकिस्तान खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान जे अमन लाइ कोशिशुनि खे बि नुक़सान रसाइण चाहिनि था। दुनिया दहशतगर्द हुननि जे सरपरस्तनि जो असल चहिरो ॾिसे। वज़ीर आज़म चयो त धमाके सबबि मासूम जानियूं विञाइजी वियूं। दहशतगर्दनि जूं अहिड़ियूं बुज़राणियूं कारवायूं पाकिस्तानी आवाम जो आज़म कमज़ोर नथियूं करे सघनि। दहशतगर्दनि खे पहाड़ खां पटण वारे आज़म ते क़ाइम आहियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ऐं पाकिस्तान जे दुश्मन जो मुल्क खे गैर मुस्तहकम करण वारियूं साज़िशूं नाकाम थींदियूं। पूरी क़ौम दहशतगर्दी ऐं पाकिस्तान जे अमन ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िशुनि ख़िलाफ़ आहे। केपी जे इलाइक़े बनू में पाक फ़ौज पुलिस सिटडी जो गॾियल ऑपरेशन सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि ऑपरेशन में 16 खारजी मारिजी विया। ॿ पुलिस अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्स जो चवणु आहे त ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो। पाक फ़ौज ऐं पुलिस समेत ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे।

अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त मुल्क पाकिस्तान जी ख़िते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सदास मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सदास मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म मिसाक डार जो चवणु आहे त अमरीकी सदर ट्रंप मुस्लिम अॻवाननि सां ॻाल्हियूं कयूं। ॻाल्हियुनि दौरान हकारी नतीजनि जी उमीद पैदा थी। पाकिस्तान ख़िते में पायदार अमन गडि॒यल एतिराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। ख़िते ऐं दुनिया जे अमन लाइ छिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे तरजीह ॾियणी पवंदी।

इहो माणियल नई तजवीज़ुनि में लबनान में जंगबंदी बि शामिल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ईरान जो ज़ोर आहे त जंग ख़तम थियण जे कंहिं बि मुआदे लाइ लबनान में जंगबंदी मुआदो लाज़मी हूंदो।

वरे वज़ीर मुराद अली शाह पारां शाहराह भुट्टो जो दौरो शाहराह भुट्टो जे शाह फैसल टोल प्लाज़ा ते इनफॉर्मल इजलास वरे वज़ीर पारां शाहराह भुट्टो ते पुलिस पेट्रोलिंग 24 कलाक यकीन बणाइण जी हिदायत इजलास में एडिशनल IG आज़ाद खान शाहराह भुट्टो ते सिक्योरिटी बाबति वरे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी मनसूबे जो भी दौरो कयो वॾे वज़ीर नुमाइश खां सफूरा चौरंगी ताईं तामीराती कमनि जो बजाइज़ो वरितो

0: सेंधो को मत
1: हथियार था वो साफ साफ कर रहे थे तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खुल हो गया है इतफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बंक हो गया है इतफाक आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें अगर इतफाक नहीं होता अगर कोई खुदा न खास्ता मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है
0: एमपीएस और आप सर की ठुल बरसा पोरत के कतल कनल वडेरे जो मौके पर जान लगो आला सतह जांच का आ गई वाक्यो इतफाकी करार दे छो फर्जी तौर जांच जो मुतालबो कयो डॉक्टर सोराब सर की पंजे वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो वाक्यो इतफाक है बिलावल सर की पिस्टल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नोमान के गोलियों लग्यू पुलिस में वडेरे के विंगारूपण की वाक्यो इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छोड़

टंडो आदमबर सां मुड़ुस डंडा ऐं सरोटा हणी ज़ाल खे क़तलु करे छॾियो। घोट माणक थईम में घरू परेशान था। मुड़ुस नदीम ज़ाल अलीना थईम खे डंडा ऐं सरोटा हणी क़तलु करे छॾियो। पुलिस नारी जे मुड़ुस नदीम खे गिरफ़्तार करे वरितो।

चक भरिसां ॿाहिरि बिरादरी जे बिंदुरनि जे खूनी तकरार जो जरगो पंजनि खूननि ऐं हिकु ज़ख़्मी जो मजमूई तौर ते 1,99,00,000 ॾंढ मुक़ररु। घोट आमिल महर में बेले खाते जी ज़मीन तां हलंदड़ खूनी तकरार जो जरगो अॻूणे MNA गौस पक्ष महर जी सरपंचीअ में थियो। अली मोहम्मद धुर ते ॿिनि खूननि ऐं हिकु ज़ख़्मी जो 87,00,000 ॾंढ मुक़ररु। जमालुद्दीन ते टिनि खूननि जो 1,12,00,000 ॾंढ मुक़ररु। फ़ैसिले जी फतवाबाद ॿई धुरियूं खीर खंडर।

सारा जी फितरीसूं मोर पखी बीमारी वगे मरण लगा नगर पालकर जे गोड तगोसर साकरी पनूमल जे ढाणे में रानी खेत बीमारी वगे 10 मोर मरी व्या गोठण चवा रानी खेत बीमारी सां मोर अखियन का नाबीन थी फतकी फतकी मरी वञन था वाइल्ड लाइफ खातो थर जे फितरीसूं बचाए

0: ऐं चाचरो भरिसां छहनि ॿारनि जी माउ जो फाउ लॻल लाश थ घोट कारूंचरीअ में औरत शफ़ियत रायमो जो वण में फाउ लॻल लाश थायो पुलिस मां जो वाकियो अबकार जो लॻी रहियो आहे वधीक जांच करियूं पिया
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें और ग्लोबल के साथ अब तक मिनटों में पहुंची रेमिटेंस

0: जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी ख़ारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। अधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-760।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

कोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा टे जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद है दहशतगर्दन मासूम शहरन के निशानो बनायो है। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी तो दहशतगर्दन उन्हन जा सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाए कोशिशन के नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन्हन जे सरपरस्तन जो असल चेहरो दिसे। वजीर आजम तो धमाके सुबह मासूम जानू विंजाई व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ू बुजदलानी कार्रवाइयों पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर न थी कर सकन। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन जरदारी तो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करने वाली साजिशों नाकाम थी। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बलोचिस्तान के वे वजीर सरफराज बुख्टे की सदारत टाइम इजलास। आईजी बलोचिस्तान इजलास के चमन फाटक वेझो धमाके की शुरुआती रिपोर्ट पेश कई। मोहसिन नकवी वहशियन चमन में मासूम शहरन से हमलों कर शर्मनाक अमल जो मुजाहरो कयो। सरफराज बुख्टी जो चवण हो तो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दन के मंतकी अंजाम से पहुंचाया वो। शहीदन के कुटुंबन के अकेलो न छींदी। जख्मी के इलाज लाए मां पान निगरानी कर रो आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए नायब वजीर आजम इसहाक डार की मौजूदगी में पाकिस्तान ए चीनी कंपनियों विच में मफामती यादाश्त नामन ते सयूं। वजीर आजम चीन के शहर हांगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकम्मल थियण जो जश्न मल्हाए रहा आयूं। सदर शी जिनपिंग चीन के आलमी मुआशी अस्करी ताकत बढ़ाया। पाकिस्तान में मैदनियात जा वड़ा जखीरा मौजूद आन। सीड़पकारी की घुर्ज है।

ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलींदो ऐं काफ़ीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तमु कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादीअ सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो। मुफ़ामती याददाश्त नामनि में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाव थियल यूरेनियम जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि। डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। मुआदे बाद आबडाए हुर्मुज़ बि खोलियो वेंदो। डील बावजूद आबनाए हुर्मुज़ ते असांजो कंट्रोल हूंदो। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से चवण आहे त आबनाए हुर्मुज़ खां गुज़रण जो वक़्तु ऐं मेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारियूं जारी कंदियूं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त MOUs आख़िरी मरहले में आहिनि। तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारियूं ॻाल्हियूं वक़्त खां अॻु जूं आहिनि। ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि नाहे। अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखण जोगियूं आहिनि।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवण है त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम अॻवाणनि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजनि जी उमेद पैदा थी आहे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गॾियल एतिराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ छिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारीअ खे तरजीह ॾियणी पवंदी। पाकिस्तान ज़रिए उमाड़ियल नई तजवीज़नि में लबनान में जंगबंदी बि शामिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त तेहरान जो ज़ोर आहे त जंग ख़तम थियण जे कंहिं बि मुआदे लाइ लबनान में जंगबंदी मुआदो लाज़मी हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां शाहराए भुट्टो जो दौरो। शाहराए भुट्टो जे शाह फैसल टोल प्लाज़ा ते इनफॉर्मल इजलास। वॾे वज़ीर पारां शाहराए भुट्टो ते पुलिस पेट्रोलिंग 24 कलाक यकीनी बणाइण जी हिदायत। इजलास में एडिशनल IG आज़ाद खान शाहराए भुट्टो ते सिक्योरिटी बाबति वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी। वॾे वज़ीर कराची बस रैपिड ट्रांज़िट रेड लाइन मनसूबे जो बि दौरो कयो। वॾे वज़ीर नुमाइश खां सफूरा चौरंगी ताईं तामीराती कमनि जो बि जाइज़ो वरितो। सिंध हुकूमत ऐलानियल 4 ॾींहनि जी ईद मोकलनि मां 1 ॾींहुं घटाए छॾियो। मोकलूं चेटाए 3 ॾींहं करण जो नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिबि ईद उल अज़हा जूं मोकलूं हाणे 26 खां 28 मई ताईं हूंदियूं।

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खोल हो गया है, इतफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बाग हो गया, शहीद हो गया है इतफाक। आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और आप सरकी ठुलो वेझो पोरत के कतल कंदड़ वडेरे जो मौकिफ वरजाण लगो, अला सतही जांच का अगी वाक्यो इतफाकी करार दे छो, फर्जी तौर जांच जो भी मुतालबो। डॉक्टर सोहराब सरकी पंजे वीडियो बयान में यकीन डेराण जी कोशिश कई तो वाक्यो इतफाक है। बिलावल सरकी पिस्टल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नोमान के गोलियों लगियों, पुलिस भी वडेरे की वंगारू बणजी वाक्यो इतफाकी करार दई केस छो हो। टंडो आदम वेझो मुड़स डंडा ए सरोटा हणी जाल के कतल कर छो, गोट माणिक थई में घरू अणबड़ता मुड़स नदीम जाल अलीना थईम के डंडा ए सरोटा हणी कतल कयो, पुलिस नारी जे मुड़स नदीम के गिरफ्तार करे वरतो। चक वेझो मार बिरादरी के बिन धुरन की खूनी तकरार जो जरगो, पंज खून एक जख्मी जो मजमू तौर से 1,99,00,000 रुपया डंड मुकरर, गोठ आमिल मार में बेले खाते की जमीन त हलंदड़ खूनी तकरार जो जरगो अगूणे एमएनए गौस बख्श मार की सरपंची में थो, अली मोहम्मद धुर से बिन खून एक जख्मी जो 87,00,000 डंड मुकरर, जमालुद्दीन से टिन खून जो 1,12,00,000 डंड मुकरर कर वो, फैसले की फतवा बाद बई धुर खीर खंड थी व्यू। थर की फितरी सू मोर पखी बीमारी वगे मरण लगा, नगर पार्क के गोठ तगोसर साकरी पुनूमल के ढाणे में राणी खेत बीमारी वगे 10 मोर मरी वया, गोठान तो राणी खेत बीमारी सब मोर अखियन का नाबीन थी फतकी फतकी मरी वजन था, वाइल्ड लाइफ खातो थर की फितरी सू बचाए। छाछरों वेझो छियन बालन की माओ जो फाहो लगल लाशत, गोठ कारू जरिए में औरत शफियत रामू जो वण में फाहो लगल लाशत आयो, पुलिस मौजिब वाक्य आपघात जो लगी रो है, वधिक जांच कई पी वे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
4: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसी जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद है दहशतगर्दन मासूम शहर के निशानो बनाया है। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी चयो तो दहशतगर्दन उन्हन जा सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाएं चाहन था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाए कोशिशन के नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन्हन जे सरपरस्तन जो असल चेहरो डिसे। वजीर आजम चयो तो धमाके सबब मासूम जानू विञाइजी वयूं। दहशतगर्दन जो अड़ू बुजदलाणियूं कारवायूं पाकिस्तानी अवाम जो अज़म कमजोर न थियूं करे सघन। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करण वाली साजिशू नाकाम थी। सदारत टाइम इजलास आई जी बलोचिस्तान इजलास के चमन फाटक वेझो धमाके की शुरुआती रिपोर्ट पेश कई। मुहसन नकवी चयो तो वहशियन चमन में मासूम शहर से हमलो कर शर्मनाक अमल जो मुजाहरो कयो। सरफराज बुख्टी जो चवण हो तो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दन के मंतकी अंजाम से पहुंचाया वो। शहीदन के कुटुंबन के अकेलो न छींदी। जख्मी के इलाज लाए मां पान निगरानी कर रो आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए नायब वजीर आजम इसहाक डार की मौजूदगी में पाकिस्तान ए चीनी कंपनियों विच में मफामती याददाश्त नामन ते सयूं। वजीर आजम चीन के शहर हांगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे चयो तो असा पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकम्मल थियण जो जश्न मल्हाए रहा आयूं। सदर शी जिनपिंग चीन के आलमी मुआशी अस्करी ताकत बणायो। पाकिस्तान में मैदनियात जा वडा जखीरा मौजूद आहिनि। सीड़पकारी की घुर्ज है।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवण आहे त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम अॻवाननि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजनि जी उमेद पैदा थी आहे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गॾियल एतिराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ छिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारीअ खे तरजीह ॾियणी पवंदी। पाकिस्तान ज़रिए उमाड़ियल नई तजवीज़नि में लबनान में जंगबंदी बि शामिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त तेहरान जो ज़ोर आहे त जंग ख़तम थियण जी कंहिं बि मुआदे लाइ लबनान में जंगबंदी मुआदो लाज़मी हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां शाहराए भुट्टो जो दौरो। शाहराए भुट्टो जे शाह फैसल टोल प्लाज़ा ते इनफॉर्मल इजलास। वॾे वज़ीर पारां शाहराए भुट्टो ते पुलिस पेट्रोलिंग 24 कलाक यकीनी बणाइण जी हिदायत। इजलास में एडिशनल IG आज़ाद खान शाहराए भुट्टो ते सिक्योरिटी बाबति वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी। वॾे वज़ीर कराची बस रेपिड ट्रांज़िट रेड लाइन मनसूबे जो बि दौरो कयो। वॾे वज़ीर नुमाइश खां सफूरा चौरंगी ताईं तामीराती कमनि जो बि जाइज़ो वरितो। सिंध हुकूमत ऐलानियल 4 ॾींहनि जी ईद मोकलनि मां 1 ॾींहुं घटाए छॾियो। मोकलूं 4 ॾींहनि मां घटाए 3 ॾींहं करण जो नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिबि ईद उल अज़हा जूं मोकलूं हाणे 26 खां 28 मई ताईं हूंदियूं।

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खुल हो गया है इतफाक से, कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बर्क हो गया शहीद हो गया है इतफाक। आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव लोग एक आदमी को कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और आप सरकी ठुल वेझो पोरत के कतल कंदड़ वडेरे जो मौकिफ वरजाण लगो, अला सतही जांच का अगी वाक्यो इतफाकी करा दे छो, फर्जी तौर जांच जो भी मुतालबो। डॉक्टर सोराब सरकी पंजी वीडियो बयान में यकीन डेराने की कोशिश कई तो वाक्य इतफाक है, बिलावल सरकी पिस्टल साफ कर रो हो तो अजमल उर्फ नोमान के गोलू लगे, पुलिस भी वडेरे की वंगारू बणजी वाक्य इतफाकी करार दे केस दाखिल कर छो हो। टंडो आदम वेझो मुड़स डंडा ए सरोटा हणी जाल के कतल कर छो, गोठ माणिक थई में घरू अणबड़ता मुड़स नदीम जाल अलीना थईम के डंडा ए सरोटा हणी कतल कयो, पुलिस नारी जे मुड़स नदीम के गिरफ्तार करे वरतो। चक वेझो मार बिरादरी के बिन धुरन की खूनी तकरार जो जरगो, पंज खून एक जख्मी जो मजमूई तौर से 1,99,00,000 रुपया डंड मुकरर, गोठ आमिल मार में बेले खाते की जमीन त हलदड़ खूनी तकरार जो जरगो अगूणे एमएनए गौस बख्श मार की सरपंची में थो, अली मोहम्मद धुर से बिन खून एक जख्मी जो 87,00,000 डंड मुकरर, जमालुद्दीन से टिन खून जो 1,12,00,000 डंड मुकरर कर वो, फैसले की फतवा बाद बई धुरू खीर खंड थी व्यू। जी फितरी सू मोर पखी बीमारी वगे मरण लगा, नगर पार्क के गोठ तगोसर साकरी पुनूमल के ढाणे में राणी खेत बीमारी वगे 10 मोर मरी वया, गोठाणन चयो तो राणी खेत बीमारी सबब मोर अखियन का नाबीन थी फतकी फतकी मरी वजन था, वाइल्ड लाइफ खातो थर जी फितरी सू बचाए। छाछरों वेझो छियन बालन की माओ जो फाहो लगल लाशत, गोठ कारू जरिए में औरत शफियत रामू जो वण में फाहो लगल लाशत आयो, पुलिस मूजिब वाक्य आपघात जो लगी रहा है, वधिक जांच कई पी वे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो ए होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी, मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो, बिना जरूरत के घर खां बाहर न निकरो, बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो, घणो पानी वापरायण की आदत ठायो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो, हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क के तावुन सा आवाम के आगाही लाए पेश कयो वयो।
5: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। I realized I was made for music.
2: जब तक मैं जीता हूँ तो वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूंगा।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु।

0: मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ए सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते के लिए 0327-99-84-763
1: अजरक के रंगों से रंगी
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। वॾी ईद जूं वॾियूं मोकलूं, सिंध हुकूमत ऐलान करे छॾियो। सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी, पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान। शहरनि खे गैर ज़रूरी तौर घरां न निकिरण जो मशवरो। औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइबो, मुफ़्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं, शर्जील इनाम में मिणो। सरकारी मनसूबनि ते मुक़रर 85 मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम। ओग्रा में करप्शन स्कैंडल जी जांच तेज़, ऑयल मेंबर तलब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बुहरान। सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा जे 4 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत पारां उन हवाले सां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। उन नोटिफिकेशन मूजिबि ईद उल अज़हा जे मौक़े ते 24 मई खां 29 मई ताईं मोकलूं हूंदियूं। वाज़े रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईद उल अज़हा जे मौक़े ते 3 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे, जेकी 24 मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं। मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो। मौसमियात खाते मूजिबि सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते शहरनि, आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकिरण खां पासो कनि ऐं सख़्त गर्मीअ खां एहतियाती उपाव इख़्तियार कनि। सीनियर सूबाई

असां सां गॾु आहिनि सकण जा मशहूर मारूफ़ डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, डॉक्टर साहब DHMS RHMD पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरार नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह सां वाबिस्ता आहिनि। माहिर अमराज़ आहिनि नक कन गलो, पुराणो नज़लो, निछो मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, तिली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज, खंघ, TB, हेपेटाइटिस B, C,

हो त जंहिंसां तव्हांजे घर में भाॼी ठहंदी त ॻोठ सॼे ॻोठ में वाह वाह थींदी यार, इन ई घर में जेका भाॼी आहे न उहा बहितरीन आहे। टाइम आहे, हीअं तव्हां सिखी सघो था त सुभाणे जेका असांजी अदड़ियूं वेठियूं आहिनि घर में त उहो केॾां शादी करे वञे त हुते विवाह थिए यार, माइटनि मानी ठाहिण अहिड़ी सेखारी आहे त असां आंगुरू चटे चटे बेज़ार थी पवंदा आहियूं। त इहा छा अव्हां जी इज़त थिए पई, त इन करे अञा इन्हनि शयुनि ते ग़ौर कयो। इनशाला अलाह अव्हां खे सभिनीनि खे क़ुर्बानीअ जे गोश्त में बरकत ज़रूरु ॾींदो, माइटनि जो ग़रीबनि जो अहसासु ज़रूरु कजो। अॼोके प्रोग्राम में मां अव्हांजो इन ई ॻाल्हि ते मथो खाईंदुसि ऐं कल्ह के प्रोग्राम में मां इहा ई ॻाल्हि अव्हांजे साम्हूं वरी रखंदुसि, त इन करे ख़्यालु ज़रूरु रखिजो। इलाज जे लाइ सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक ते अची सघो था, असां वेठा हूंदासीं सुबुह 9 खां शाम 6 वॻे ताणी, हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। असां अव्हांजा पंहिंजा डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत। इहा क्लिनिक तव्हांखे वरी मां ॿुधाए छॾां, इहा क्लिनिक सम्झ में न ईंदी हाजी इनायत क्लिनिक कहिड़ी आहे, स्टेशन रोड ते किथे आहे, माण्हू परेशान ज़रूरु थींदा आहिनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रहे त क्लिनिक उन ई जॻह ते आहे, उहा ई क्लिनिक आहे जेको मुंहिंजे ॾाॾे जी क्लिनिक हुई। असल में छा आहे त हू जिते असां खोलियोसीं त हुते इलाइक़ो कुझु हाणे जीअं माहौल मटिजी थो वञे, इलाइक़ो मटिजी थो वञे त उन में उहा इलाइक़ो रिवर्स थिए पियो, पोइते अचे पियो अलाए छो सम्झ में नथो अचे, अचणु वञणु माण्हुनि जे तकलीफ़ ऐं इन खां अलावा रोड रस्ता ब्लॉकेज तमामु घणी थिए पई, त अचणु वञण में पेशंट खे तकलीफ़ तमामु घणी, दवा वठणु वरी शहर वञनि वरी उतां का सामान वठनि वरी ॿारनि खे खणी अचनि या का दवाऊं आहिनि, मेडिसन आहे, का टेस्ट आहे, रिपोर्ट आहे, उन जे लाइ एतिरो परे वञणु पए। इहा सभु शयूं असां सोचे वरी पेट्रोल जो रेट ॾिसी असांजो अञा माना ख़र्चु तमामु घणो आहे। सभिनीनि शयुनि खे सोचे करे असां इहो ई फ़ैसिलो कयो त असां शहर जी तरफ़ हलूं था, जंहिंसां असांजो जेको मरीज़ असां वटि अचे पियो हुनखे अचण में वञण में सवलाई थिए। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॻोठ खां माण्हू निकिरे थो त इहो सोचे निकिरे थो त वञा पोइ दवा जे लाइ, यार हीउ ॿ टे हिकिड़ो ॿ कमु करे वञा। जे असां हूंदासीं शहर में, असां दवा वरिती शहर में कमु करे सो आसानीअ सां पंहिंजे ॻोठु हलिया वियासीं, टाइम बची वेंदो ऐं टाइम बि अव्हांजो इनशाला ज़रूरु बचे थो। असांजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त पेशंट खे असां तक़रीबन ऐं पाण वटि विहारे टाइम ज़रूरु ज़ाया कंदो आहे पेशंट जो, हर पेशंट जो। ऐं अॼु बि मुंहिंजा पेशंट हुआ वीचारा, हिकिड़े ॿिनि सां त मुंहिंजी थी वई, ऐं चए पियो यार मुंहिंजे साईं मुंहिंजे खुड़ीअ में सूरु आहे, मुंहिंजे परेशान छो थो थी, सफ़ा सवलो कमु आहे साईं, छा उज़ाई वारी ईद आहे, छेलनि जा पाॾनि जा पावा रखजांसि, मटाए छॾंदासीं। ऐं सभिनी खां वॾी में वॾी भलाई इहा थींदी तोखे जूता वठण जी ज़रूरत ई न पवंदी, छेला किथे जूता पाईंदा, जूतनि जो बि ख़र्चु पुछंदो, चपलनि जो बि ख़र्चु पुछंदो। बसि इहा छा आहे त असांजी इहा पेशंटनि सां इहा हंसी मज़ाक खिल भोग असांजी हलंदी रहंदी आहे, त इन करे को बि पेशंट आहिनि उहा हिननि ॻाल्हि खे दिलि ते न वठनि। इहा छा आहे त इहो असांजी ख़ानदानी रग आहे, तव्हां सिधी ॻाल्हि त ॾाॾे सां इहो ई थींदो हुओ त हर पेशंट खे ईअं छॾबूं विछड़बूं ज़रूरु ॾींदो हुओ, त उहो ई असां में आदत आहे त असां उन आदत जे करे कंहिंखो दिलि आज़ारी थींदी आहे त असां चवंदा यार ठीकु आहे असां अव्हां सां वरी न कंदासीं, पर इहा असांजी आदत आहे, हर पेशंट सां असांजी करण जी आदत आहे, त इन करे हिनखे दिलि ते न रखिजो, घबराइजो न, मां ॿिन्ही चवां थो, घणेई का ॻाल्हियूं मुंहिंजी न हूंदियूं आहिनि पर इन में हक़ीक़त ज़रूरु हूंदी आहे का न का शइ जी। पेशंट जो हो त नालो न खणंदुसि मां ऐं उन शइ खे मां शॉट कर में ॿुधाईंदुसि त या न छॾियोसि, उहा ॻाल्हि अजीब ॻाल्हि आहे, हर वर के घर वारा ॿुधनि पिया त मूंखे सुभाणे किलेन ते चवंदा यार डॉक्टर इहा कहिड़ी ॻाल्हियूं करी पियो, असांजा राज पियो खोले, त उहा शइ छा आहे त पेशंट जो हो त मूंखे पेट में सूरु आहे, हा शॉट कर में ॿुधायां थो, पेट में सूरु आहे मुंहिंजे, यार सूरु त आहे यार किथां सूरु थिए साईं, हितां सूरु थिए थो माइदे जे आम्हूं साम्हूं आर पार, त मूं ग़रीब खे यार खे छा चयमि, यार सची सची ॿुधायो दवा कया साईं, 2024 खां लॻो पिया इलाजु थई न पियो, टेस्टूं रिपोर्टनि में सभु शइ क्लियर आहे, पर मूं चयो यार पोइ त डॉक्टरनि खे सम्झ में नथो अचे, टेस्ट बि क्लियर आहे पोइ सूरु छाजो आहे, मूंसां हक़ीक़त कर त मां दवा ॾींहुं साईं, छा हक़ीक़त कयां, मूंखे ॾे ख़बर माई त कोन मारियो, अच्छा माई मुको हुयो हुजे, माई लत त कोन आई आहे, चए न साईं ईअं कीअं माई जे लथंदी असांखे, मूं चयो यार सूरु टेस्टूं क्लियर आहे, शइ क्लियर आहे, पोइ सूरु छाजो सूरु आहे, लॻे थो ज़ाल मुड़ुस तां भई विड़ो था, त इहा विणी असांजी मश्करी उन टाइम ते थी ई आहे, हर या उनखे चवंदा मश्करी आहे, कोई हक़ीक़त कान्हे, ईअं न थींदो आहे, तव्हां दिलि ते ॻाल्हियूं न वठिजो, चयो असां सम्झूं पिया इहा तव्हांजो आदत आहे, त इन करे प्रोग्राम अॼोको सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां असांजो अॼुकल्ह प्रोग्राम सॼो इन ॻाल्हियुनि में थी वियो आहे ख़तमु। असां वटि वरी अव्हां शाम मिलंदासीं अव्हां सां सुभाणे क्लिनिक ते, सुभाणे असांजी क्लिनिक हलंदी सुबुह 9 खां वठी शाम जो 6 वॻे ताईं, पोइ वरी शाम जो वरी FM ते ईंदासीं अव्हां सां गॾु।

असां वरी वञी खे कंहिं न कंहिं नए तरीक़े सां ॾिसां थो को हुजे को तरीक़ेकार आहे की को बिरयानी ठाहिण जा गोश्त ठाहिण जा उहो ॿुधायां त सुभाणे अचो या डॉक्टर आहे या शेफ आहे इहा शइ जे बारे में असां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं इनशाला असांजी कोशिशि रहंदी प्रोग्राम सिहत जो राज़ ईअं जारी सारी रहे अव्हां जी मुहबतूं कुर्ब असांखे मिली सघनि त जंहिंसां अव्हां इन प्रोग्राम में असां सां गॾिजी रहो असांजी कोशिशि रहंदी आहे अव्हां जी सिहत बहाल थिए बीमारियूं ख़तमु थिए जेका दवा मूंसां थी सघे अॼु मूं वटि पेशेंट आयो कनि सूर जी तकलीफ़ जे हवाले सां चेकअप मूं ज़रूरु कयो न को फीस वरिती न को दवा ॾिनी मूं चयो साईं इहो कमु तुंहिंजो डॉक्टर असां वटि शहर में वियो आहे तूं सुठे नमूने सफ़ाई करे तुंहिंजो कमु करे वेंदो हर भर मां दवा गोरियूं ॾेई वक़्तु ज़ाया कनि खां बहितर आहे होॾां हलियो इहा छा आहे त इहो न आहे त दिलि में सोच त पेशेंट वियो यार पैसा न बचनि न ख़ैरु आहे उन जो ग़रीब जो कमु थी वियो अलाह मूंखे ॾिसे पियो अलाह मूंखे अजर पाण ॾींदो इन्हनि खां छॾे ॾियो साइमिन प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु ऐं ॿिए प्रोग्राम ताणी मूंखे ॾियो इजाज़त अलाह निकिरबान।

0: Gear Radio Network पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां उदो पिया जीएफएम नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माहा गुलाब खान बेणा।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा वॾी ईद जूं वॾियूं मोकिलूं, सिंध हुकूमत ऐलान करे छॾियो। सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी, पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान, शहरनि खे गैर ज़रूरी तौर घरां न निकिरण जो मशवरो। औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइबो, मुफ़्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं, शर्जील इनाम में मिणो। सरकारी मनसूबनि ते मुक़रर 85 मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम। ओग्रा में करप्शन स्कैंडल जी जांच तेज़, ऑयल मेंबर तलब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बुहरान। सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा जे 4 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत पारां उन हवाले सां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा जे मौके ते 24 मई खां 29 मई ताईं मोकलूं हूंदियूं। वाज़े रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईद उल अज़हा जे मौके ते 3 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे, जेकी 24 मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं। मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो। मौसमियात खाते मूजिबि सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते शहरनि, आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकिरण खां पासो कनि ऐं सख़्तु गर्मीअ खां एहतियाती उपाउ इख़्तियार कनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सॼे सूबे में मंशियात जे नासुर ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई जारी आहे ऐं ज़हर पखिड़ींदड़ अंसरनि ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोॻो आहे। हुन वाज़े कयो आहे त धरतीअ खे मंशियात खां पाक करणु असांजी पहिरीं तरजीह आहे। हैदराबाद में हिकु तक़रीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर अनमोल नाले औरत जो हवालो ॾींदे चयो त हुन समाज में ज़हर फैलाइण जी कोशिश कई, जंहिं ते कानून हरकत में आयो। हुन चयो त सूबाई हुकूमत जिते हिकु तरफ़ ॾोहनि ऐं मंशियात खिलाफ़ विढ़ी रही आहे, उते ॿिए पासे औरतुनि खे बाइख़्तियार बनाइण लाइ तारीख़ी क़दम खणी रही आहे। शर्जील इनाम मेमण ऐलान कयो त सिंध हुकूमत औरतुनि खे बिना मुआवज़े स्कूटी तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करे रही आहे ऐं उहा विर्छ निज मेरिट जे बुनियाद ते कई पई वञे। हुन चयो त हाणे वकील बिरादरीअ सां तालुक़ु रखंदड़ औरतुनि खे बि पिंक स्कूटी मुफ़्त ॾिनी वेंदी, जॾहिं त औरतुनि लाइ धार पिंक बसूं अॻु ई कामयाबीअ सां हलायूं पियूं वञनि। सूबाई वज़ीर तवानाई ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में सस्ती बिजली जी पैदावार रुगो थर जे कोयले सां ई मुमकिन आहे ऐं सिंध सरकार उन जहिड़ा सभु वॾा ऐं अवामी फलाही मनसूबा कामयाबीअ सां शुरू कया आहिनि, जंहिंजे दायरे खे हाणे वधीक सूबे ताईं फहिलायो पियो वञे। सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडाक बुनियादनि ते मुक़रर 85 खां वधीक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हाई कोर्ट जे आइनी बेंच आॾो मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडाक बुनियादनि ते मुक़रर मुलाज़मनि जी मुस्तक़िली बाबति दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी। वकील मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त दरख़्वास्त गुज़ारनि खे सिंध हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि में मुक़ाबले वारे अमल ज़रिए मुक़रर कयो वियो हो ऐं उन्हनि जी नौकरियुनि में साल ताईं वाधि कई वेंदी रही। अदालत रिमार्क्स ॾिना त सिंध रेगुलराइज़ेशन कानून तहत दरख़्वास्त गुज़ारनि खे मुस्तक़िल कयो वञणु घुरिजे, जेतोणीकि कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़मनि खे मुस्तक़िलीअ जो हक़ बुनियादी हक़ तौरु हासिल नाहे, पर सिंध असेंबली कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडाक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जे लाइ ख़ासि कानून साज़ी कई आहे। सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालनि ताईं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदड़ मुलाज़मनि खे तहफ़ फराहम कनि था। हुकूमत बिना कंहिं इम्तियाज़ी सलूक जे समूरनि अहल मुलाज़मनि खे कानून जो फ़ाइदो ॾियण जो पाबंद आहे। ओग्रा में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल जी जांच में वॾी अगभराई, मेंबर ऑयल तलब। शुरूआती शाहिदनि जे रोशनीअ में ओग्रा जे मेंबर ऑयल जे किरदार बाबति अहम सवाल साम्हूं अची विया। एफ़ आई ए

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।